satanas maniki kat kahe na jai jeko kahe ke che pachatai ragar kam nal kanahar manikava karam vichar esa nam narinjan hoy jeko manjane mankoy mane surtove mambut mane sagavan rakhi sut mane mochanta na kai mane jam ke sat na jai esa nam narinjan hoy jeko manjane mankoy mane mag tak na pae mane patsyo par gajai mane magna chale pant mane taram sati sanban esa nam narinjan hoy jeko manjane mankoy mane pave mok tuar mane parvare sadar mane tare tare guru sik mane nanakave navik esa nam narinjan hoy jeko manjane mankoy panch parvan panch pardan panche pave terke man panche soe tarajan panche ka gurek tyan jeko kahe kahe vichar karte ke karne na ismar dol dharam kya kaput santok dharam kya kisut jeko buche hove sachyar talle upar ke tavar darti hor tare hor hor tiste var kare kamjor jihi jahram ga kenav savana likya buri kalam eo lek lek jane ko e leka lekya ke tahoe kete tan siari orup kete ta jane konkut kita pasao e kokovao tiste ho e laktariao kurit kaman kaha vichar barine java e kovar jyotu e pave sai balikar tu sada salaman nirankar asanka jap asanka bao asanka puchya asank taptao asank kuryam vet pat asank jogm rai udas asank bhagangyan vichar asank sati asank datar asank sur muvaksar asank mulivla etar kurit kavan kaha vichar parina java ekubar jyotu e pave sai balikar tu sada salaman nirankar asanka murra makor asanka jor haram makor asanka marka jaye jor asanka lvatya kamai asanka papi pap kar jaye asanka ryar kare firai asang malej malva kai asang ninda sikare var nanak nish kahe vichar barin java ek var jyotu pave sai balikar tu sada sanaman nirankar asanka nava sanka tava gamma gamma sankalo asanka re sirva rahoe akri nama kri sala akri giyangi kunga akri lekam bolamban akri sansanjo vekan jene leke te senai je furmae te te pae je takita te tanao vena vena e kotao kurtakavan kaha vichar barin java ekovar jyotu pave sai balikar tu sada salaman nirankar bariye hatare tande pani tu te huteske mud paliti ka parahoe desa bulnae odoe bariye ma papa ke sang oto pe na ve keran puni papia karnae kar kar karna lekne jao आपे पीछा पे विकाओ नानक हुकमिया वो जाओ तीर तातिया दतन जेको पावे तिर के मन सुनिए मनि मक्खी तबाओ अंतर्गा तेरा मनाओ सगुन तेरे में ना एकोए विंगुन की ते वगत न हो स्वासाद पानी बरमाओ सत सुन सदा मंचाओ कवन सुबेला वत कवन कवन जित कवन वार कवन सिरुति माओ कवन जितो आकार बिल न पाया पंत जी हो वे लिख पुरन भग न पायो का दिया जन लिखल ने कुरन तिथे वर्ण जोगी जाने रूप माओ न खोए जा करता सिरति को साजे आपे जाने सोए किव खरा का किव सलाई किव अन्य किव जाना नानका को साको आके एक लिख सियाना बदसाई बदिनाई किता जका होवे नानक जे को आपो जाने आगे जान सोए पताला पताला गास गास और कोर के बल तके एक कहन के बाद सहे सतर कहन कतेवा असुन का एक दात
लेखा होए तो लेखिए, लेके होए विनाश। नानक वादा आखिए, आपे जाने आप। सलाई सलाई तिसर न पाया, नादरी आवे पावे समल न जानिए। समल सा सुल्तान, केरी सती मलदान। कीरी तू न होवनी, जितिस मनो न विसरे। अंत न सिफति के न अंत, अंत न करने दे न अंत। अंत न वेके स्यो न अंत, अंत न जापे क्या मन मंत। अंत न जापे की ताकार, अंत न जापे पारावार। अंकरण कते बलाए, ताके अंत न पाए जाए। हे ओ अंत न जाने कोए, बहुतक है ये बहुता होए। पद साहेब उछताओ, उछे ऊपर उछनाओ। एवर उचे होवे कोए, तिस उचे को जान सोए। जेवर आप जने आप, नानक नदरी कर मिदात। बहुत कर्म क्या न जाए, बाधा दाता तिन्नत माए। केते मंगे जो तपार, केतिया कर नई विचार। केते कप तुते बेकार, केते ले ले मुकर पाए। केते मुरे काए काए, केतिया दुपुक सदमार। ए विदात्री दातार, बन कलासी बाने होए। हो राख न सके कोय, जे को कहे आकन पाए। वो जाने जितिया मुकाए, आपे जाने आपे दे। आके सेवे के इके, जिसनो बख्शे सफत सला। नानक पातशाही पतिशाओ। अमूल गुण अमूल व्यापार, अमूल व्यापार अमूल भंडार। अमूल आवे अमूल ले जाए, अमूल भरे अमूल न समाए। अमूल धर्म अमूल दीवान, अमूल तुल अमूल परवान। अमूल बख्शीश अमूल निशान, अमूल कर्म फुरमन। अमूल अमूल क्या न जाए, आका कल्ले बल्लाए। आके वेद पद पुराण, आके परे करे बदियान। आके वर में आके इंद, आके गोबी ते गोबिंद। आके ईश्वर के सिद्ध, आके केते कीते बुद्ध। आखे दाराम के देव, आखे सरम जन सेव। केते आके आकन पाए, केते किर किर तु जाए। केते कीते होर करे, ताक न साके के इके। जेवत भावे तिरत होए, नानक जन सच सोए। जेको आके बोल बिदार, तले क्या सिर गवार गवार। सोदर के हा सोगर के हा, जित सरत समाले। भाजे नारायण के शंकर, केते गावन हारे। केते राज परिस्यो कायं, केते गावन हारे। गावे तूनो पन पनी विसंतर, गावे राज तरम दुआरे। गावे चित कुपत लिख जान, लिख लिख तरम विचारे। गावे ईश्वर वर्म देवी, सहन सदा सवारे। गावे ईद दसवेदे, देवती आदर नाले। गावे सिद्ध समाधि अंदर, गावे सद विचारे। गावे जति सती संतो की, गावे वीर करारे। गावन परन परन राखी सा, जुजू वेदा नाले। गावे मोहन यमन मोहन, सुरम मच प्याले। गावन रतानु पारी तेरे, असते रत नाले। जावे जो महावन सूरा, गावे कर विचारे। गावे कंद मलदर वर बंदा, कर कर के दारे। सही तुनु गावे जोत पावन, रेते तेरे वगर साले। होर के ते गावन से मिची न आवन, नानक या विचारे। सोई सोई सदा साहेब, सच सच ही नाई। हेवी हो सी जाए रजा सी, रचना छिन रजाए। रंगी रंगी वती कर कर, जिनसी माया जिनु पाए। कर कर वे के किता अपना, जिवतिस की बरियाई। ज्योतिष भावे सोई कर सी, हुक्म न कर रजाए। सो पति साओ सा पति साहेब, नानक रह रजाए। मुंद संतोख सरम पचोली, दियांकी करी विभूत। किंता काय क्वारी काया, जुगतंत प्रतीत। आई पंती सगल जमाती, मंज जगजीत। आदेश से आदेश।

शांति सब जाकी हृदय सवर सद संजोग विजोग दुखा चलावे लेके आवे बाग आदेश से आदेश आदि नील नाद नहा जुजुए गोवेस एका माए जुगद व्याए तीन चले परवन एक संसारी एक बंदारी एक लाहे दीवन जीव तिस भावे तवे चलावे जीफोवे फुरमन ओवे के ओन नद्रनावे बहुताय ओविदन आदेश से आदेश आदि नील नाद नहा जुजुए गोवेस आसन लोए लोए बंदार जोत सुपावे सोए कवर कर कर वे के सिर जनहार नानक सच्चे की सच्ची कर आदेश से आदेश आदि नील नाद नहा जुजुए गोवेस एक दूजी व लाख होवे लखवीस लख लख केरा आखिए एक नन जगदीश इरप परिया छुरिया हो इक्कीस सुंगला कश की आये रीस नानक नदरी पाये कुरे कुरे तीस आखन जोर चुपे न जोर जोर न मंगा दे न जोर जोर न जीवन मन न जोर जोर न रश मल मंसोर जोर न सुरति ज्ञान विचार जोर न जुगत शते संसार जैसा जोर कर वे के सोए नानक उत्तम निश न कोय राति रुति तिथि वार पवन फनिया करी पतल तिस बिश धरती राति धरम साल तिस बिशिया जुगा के रंग तिनके नान अनेक नंद कर्मी कर्मी हुए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिते सोहन पंच परवान नर निखरम पवे निशन कच पखाए ओते पाए नानके आजा पे जाए धरम खनका ए ओ धरम ज्ञान खनका आको करम केते पवन फनि बेसंतर केते कन महेश केते वर में करे करे रूप करम केवेश केतिया करम पुई मिर केते केते दूपदेश केते ईशा सुर केते केते मंदल देश केते सीत बदनर केते केते देवी वेश केते देव तरन सुन केते केते हृत संबंध केतिया कानी केतिया बानी केते पत नरिंदा केतिया सूर्ति सेव केते नानक अंतन अंत ज्ञान खान ज्ञान परछन तिते नर को ओतनंत सरम कन की वानी रूप तिते करी करिये बहुत अनुप ताकिया गला कतिया न जाए जे गो कहे किसे पछताए तिते करिये सरा मम मम बुद्ध तिते करिये सरा सदा की सुत करम कन की वानी जोर तिते होर न कोए होर तिते जोद महा बंसूर तिमे रम क्रिया भरपूर तिते सीतो सीत में ममाए ताके रूप न कत न जाए नाओ मरन था के जाए जिनके रम से मन माए तिते भगत वसे के लो कार्यानंद सच्चा मन सोए सच कंद से निरंकार कर कर वे के नदर नहल तिते कंद मल दर बर बन्ना जे को कहे तन तन अंत तिते लो आकार जीव जी हुकम तवे तिव कर जीव विगा से कर विचार नानक कतन कर सर जात पहारा दर सुनियार एरन मात वे तक यार बोकला कं तप्ताओ बंद पाओ अमृत तन गरिय शव सक्षी तकसान जिंको न तरम तिंकार नानक नदरी नदर नहाल श्लोक पवन गुरु पानी पिता मत तरत महत दिवस राय तो दाई दाया केले सकला जगत चंगिया या